इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियां, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल care.com।
1: Is journalism dead in India? Doesn't seem so.
2: जल क्या रहा है आपके सामने? कोई बता सकता है ये क्या जल रहा है?
1: Get ready to find some painful answers hidden in burning questions. Hathras 16 days, a gruesome case of pain, power and politics from the journalists on field. Streaming on Hindi Z5.
3: Need anything from Tesco? Save 25% off selected finest products, such as four signature pork sausages, now just £3.15, down from

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

झलक झलक झलकाती है, वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है,

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: शबनम साही,
1: झाड़ू अगर आप खरीद रहे हैं ना, बताइएगा जरूर खरीदा कि नहीं। I'm thinking of buying a chammach.
0: Next on Sunrise. Sunrise Radio. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Wellman and Wellwoman Supplements, for men and for women, for whatever life throws at you. From Vitabiotics, the UK's number one vitamin company, available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
2: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
3: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
2: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
3: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
2: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
4: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
2: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 App।
5: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester and Leeds. Contact Global Banking School on 0208092940 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
6: Summer is here. Stay hydrated with Meher coconut water. Natural, clean and truly refreshing. Available at all Quality Foods outlets and other leading ethnic outlets across the UK.

0: इससे बड़ा रुतबा क्या कि मैं तेरा कहलाऊं, तेरा हो जाऊं। Absolutely love this song, Stebin Ben, Jonita Gandhi. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज वेंसडे द 3rd ऑफ जून की सुबह शबनम साही के साथ, ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम द स्टूडियो टुडे, एबल टू रीड योर व्हाट्सएप मैसेजेस। अब जान में जान आई, जहां भी आप सुन रहे हैं रहिएगा मेरे साथ पूरे 12 बजे तक। देयर्स अ कॉम्पिटिशन ऑन द शो। Don't miss Southall Travel special prices to India, Pakistan, the UAE, Thailand, Bali and Africa. For the best fares and 24/7 support, call 0208-574-8410 or visit southalltravel.co.uk today. Neha Kakkar, the artist of the week on Sunrise. On the other side, Halka Halka Surur, Unplugged.
1: Ye jo halka halka surur hai, ye jo
0: बेहद खूबसूरत ये गाना, रहिएगा मेरे साथ। गुड मॉर्निंग।

0: Shabnam Sahi on Sunrise with India's Best Dancer on Sony TV. Backed by popular demand, the stage is set. The dancers are ready. Your favorite dancing show, India's Best Dancer, is back. Starts this Saturday, 9:30 p.m. on Sony TV.
1: 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111. दिन में बबलू, रात में लल्ली, ये कलाकार बन गया है सबका काल। बाप की मौत का बदला लेने आ गया है बबलू। देखिए सतरंगी बदले का खेल, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5।
2: दिस ईद उल अज़हा, शेयर द जॉय नो मैटर द डिस्टेंस, वेदर यू आर नियर और फार, सेंडिंग सपोर्ट इज जस्ट अ टैप अवे। सेंड मनी विद वेस्टर्न यूनियन, एंजॉय जीरो ट्रांसफर फीस ऑन योर फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट्स और मोबाइल वॉलेट्स। प्रेफर टू सेंड मनी इन पर्सन। वेस्टर्न यूनियन इज ऑल्सो अवेलेबल एट पार्टिसिपेटिंग पोस्ट ऑफिसेस, यूरो चेंज एंड अदर रिटेल पार्टनर लोकेशंस। डाउनलोड आवर ऐप टुडे और विजिट westernunion.com। दिस Send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
3: Diary, what time's my Specsavers eye test?
4: Hi, Miriam. It's in 15 minutes. Would you like directions?
3: Mm-hmm.
4: Great. Exit the bedroom. Pass the dog's basket. Sit at the kitchen table. You have arrived.
3: Mm-hmm.
4: Enough time to move pickles. Visitors do make him frisky.
5: Some people can't get to Specsavers unaccompanied. That's why we offer home visits. Home visits from
4: Miriam's Journey.
5: Savers.
4: Down pickles.
5: Geographical restrictions apply. Find out if you're eligible online. Zero.

0: टेकन फ्रॉम द फिल्म नाम शबाना। तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, एवरी सिंगल डे। दिस इज अमरीन स्पेशल सॉन्ग। आई नो इट, आई रिमेम्बर इट फ्रॉम अ फ्यू इयर्स अगो व्हेन अमरीन रिक्वेस्टेड द सॉन्ग ऑन हर वेडिंग एनिवर्सरी। कादिर फर्नांडिस साहब इन मोजाम्बिक, पंडित कौशिक जोशी इन पीटरबरो, वेलकम टू द शो। जहाँ भी आप सुन रहे हैं, होप यू हैविंग अ ब्यूटीफुल वेंसडे। गुड मॉर्निंग
1: लिसनर्स चॉइस, ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: हालात का है यहाँ लेके आए, कैसा ये ससुराल है।
0: A house full of chaos, a girl full of dreams. Watch a heartwarming story of love, family and emotions. Bareli Ki Bachchan starts 8th June, Monday to Friday at 10 PM on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर। आप तक पहुंचाने से पहले क्वेश्चन, गेस व्हाट बॉलीवुड्स फेवरेट पास टाइम इज एट द मोमेंट। फेवरेट थिंग टू डू, टेक पीपल टू कोर्ट। लीगल बैटल्स आर हियर देयर एवरीवेयर। अपेरेंटली दिस सॉन्ग इज ऑल्सो एम्ब्रॉयल्ड इन सम काइंड ऑफ अ लीगल कॉन्ट्रोवर्सी। अभिजीत भट्टाचार्य वेरी अनकाइंडली सेड, ये वर्जन तो मुझे बिल्कुल भजन लगता है। आप ही डिसाइड कीजिए। चुनरी चुनरी, चुनरी।

0: celebrating 36 years of excellence.
1: The Asian Station for Greater London. Sunrise Radio.
0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
2: Sunrise Radio.
3: Shabnam Sahi on Sunrise with India's best dancer on Sony TV. Backed by popular demand, the stage is set. The dancers are ready. Your favorite dancing show, India's Best Dancer, is back. Starts this Saturday, 9:30 p.m. on Sony TV.
4: जिस घुंघरू ने बाप की जान ली, वही घुंघरू अब बेटे का हथियार बनेगा। सिंह और पांडे परिवार की पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर बेटा बदला लेगा। बबलू महतो काल बनकर आ गया है। दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए सतरंगी बदले का खेल सिर्फ हिंदी Z5 पर।

0: दादू वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: Thrive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Download the Pepe's app. The chance to win prizes with every order. Give us a review on the app and you can win a weekly prize of £100 Pepe's voucher to spend at your favorite store.
1: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
2: छात्रों जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
1: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
2: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
1: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
3: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
1: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई। City Bond Travel, with over 50 years of turning dreams into unforgettable journeys. From flight-only bookings to tailor-made holidays, honeymoons, safaris and escorted group tours, City Bond Travel does it all. Discover special offers to India, Dubai, the Maldives, the Caribbean, Africa, the Far East, South America and many other destinations. Call our City Bond Travel specialists on 0208-206-3620 or visit citybondholidays.co.uk. City Bond Travel, your world. World, your journey at all protected.
5: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.

0: celebrating 36 years of excellence. Sunrise and Music. This is Sunrise with the latest news headlines. Next. Sunrise Radio. Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Pepe's have given away so many prizes on the Pepe's app. Download now, order and have your chance to win some great prizes.
1: जिस घुंघरू ने बाप की जान ली वही घुंघरू अब बेटे का हथियार बनेगा। सिंह और पांडे परिवार की पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर बेटा बदला लेगा। बबलू महतो काल बनकर आ गया है। दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए सतरंगी बदले का खेल सिर्फ हिंदी Z5 पर। It is simple with Dimple. Self-drive cars, vans, 9 or 17-seater minibuses available to rent for leisure, pleasure, business or holiday at prices cheaper than the rest. And best of all, for this month only, an extra 10% off on all bookings at the weekends. That's right, Friday to Sunday, save an extra 10%. Hire for a day or longer for UK or Europe. T's and C's apply. It is simple with Dimple. Visit dimplemotors.co.uk or call 0208-205-1200 or WhatsApp 079 51 885 022.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: The future is unpredictable at times, but the Open University are the experts in online learning, allowing you to fit study around your life. What's more, you'll have support from dedicated tutors every step of the way. Now, suddenly your possibilities are open. Search the Open University to find out more. The Open University. The future is open.
3: दिन में बबलू, रात में लल्ली. ये कलाकार बन गया है सबका कार. बाप की मौत का बदला लेने आ गया है बबलू. देखिए सतरंगी बदले का खेल, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5.
4: दिस इज सनराइज, द यूकेज़ बिगेस्ट.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।